तो यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे।

और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ पीछे जुलेखा, और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला, और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खामिंद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या दुख का अजाब दिया जाए।

उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे होशों में ही रहने दो।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलामु अलैकुम ख्वातीन हजरात, प्रोग्राम हयात तय्यबा की 12वीं नशिस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सीरतुन नबी के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। 3 साल शेब अबी तालिब में गुजर गए, इसके बाद सहीफा चाक किए जाने और इस जालमाना अहदो पैमान को ख़त्म किए जाने का वाकया पेश आया। इसकी वजह यह थी कि शुरू ही से कुरैश के कुछ लोग अगर इस अहदो पैमान से राजी थे तो कुछ नाराज भी थे, और इन्हीं नाराज लोगों ने इस सहीफे को चाक करने की तगोदो की। इसका असल मुहर्रक कबीला बनु आमिर बिन लोई का हश्याम बिन अमरू नामी एक शख्स था। ये रात की तारीकी में चुपके चुपके शेब अबी तालिब के अंदर गल्ला भेजकर बनु हाशिम की मदद भी किया करता था। ये जहीर बिन अबी उमैया मखजूमी के पास पहुंचा। जहीर की माँ आतिका अब्दुल मुतलिब की साजादी यानी अबू तालिब की बहन थी, और उसने कहा, जहीर क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम तो मजे से खाओ पियो और तुम्हारे मामू का वो हाल है जिसे तुम जानते हो। जहीर ने कहा, अफसोस मैं तन तनहा क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ कोई और आदमी होता तो मैं इस सहीफे को फाड़ने के लिए यकीनन उठ पड़ता। उसने कहा, अच्छा तो एक आदमी और मौजूद है। पूछा, कौन है? कहा, मैं हूँ। जहीर ने कहा, अच्छा तो अब तीसरा आदमी तलाश करो। इस पर हशाम मुतम बिन अदी के पास गया और बनु हाशिम और बनु मुतलिब से जो कि अब्द मनाफ के औलाद थे मुतम के करीबी नस्बी ताल्लुक का जिक्र करके उसे मलामत की कि उसने इस जुल्म पर कुरैश की हम नवाई क्यों कर की। याद रहे कि मुतम भी अब्द मनाफ ही की नस्ल से था। मुतम ने कहा, अफसोस मैं तन तनहा क्या कर सकता हूँ। हशाम ने कहा, एक आदमी और मौजूद है। मुतम ने पूछा, कौन है? हशाम ने कहा, मैं। मुतम ने कहा, अच्छा एक तीसरा आदमी तलाश करो। हशाम ने कहा, ये भी कर चुका हूँ। पूछा, वो कौन है? कहा, जहीर बिन अबी उमैया। मुतम ने कहा, अच्छा तो अब चौथा आदमी तलाश करो। इस पर हशाम बिन अमरू अबुल बख्तरी बिन हशाम के पास गया और इससे भी इसी तरह की गुफ्तगू की जैसे मुतम से की थी। उसने कहा, भला कोई इसकी तायीद भी करने वाला है? हशाम ने कहा, हाँ। पूछा, कौन कहाँ? जहीर बिन उमैया, मुतम बिन अदी और मैं। उसने कहा, अच्छा तो अब पांचवा आदमी ढूंढो। इसके लिए हशाम जमा बिन अस्वद मुतलिब बिन असद के पास गया और उससे गुफ्तगू करते हुए बनु हाशिम की कराबत और इनके हकूक याद दिलाए। उसने कहा, भला जिस काम के लिए मुझे मिला रहे हो इससे कोई और भी मुत्तफिक है? हशाम ने इस्बात में जवाब दिया और सबके नाम बतलाए। इसके बाद इन लोगों ने हजून के पास जमा होकर आपस में ये अहदो पैमान किया कि सहीफा चाक करना है। जहीर ने कहा, मैं इब्तदा करूंगा, यानी सबसे पहले मैं ही जुबान खोलूंगा। सुबह हुई तो सब लोग हसब मामूल अपनी अपनी महफिलों में पहुंचे। जहीर भी एक जोड़ा जेब तन किए हुए पहुंचा। पहले बैतुल्ला के साथ चक्कर लगाए, फिर लोगों से मुखातिब होकर बोला, मक्के वालों क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनु हाशिम तबाहो बर्बाद हों? न इनके हाथ कुछ बेचा जाए न इनसे कुछ खरीदा जाए। खुदा की कसम मैं बैठ नहीं सकता यहाँ तक कि इस जालिमाना और कराबत शिकन सहीफे को चाक कर दिया जाए। अबू जहल जो मस्जिद हराम के एक गोशे में मौजूद था बोला, तुम गलत कहते हो, खुदा की कसम इसे फाड़ा नहीं जा सकता। इस पर जमा बिन अस्वद ने कहा, बाखुदा तुम ज्यादा गलत कहते हो, जब ये सहीफा लिखा गया था तब भी हम इससे राजी न थे। इस पर अबुल बख्तरी ने गिरह लगाई, जमा ठीक कह रहा है, इसमें जो कुछ लिखा गया है इससे ना हम राजी हैं ना इसे मानने को तैयार हैं। इसके बाद मुतम बिन अदी ने कहा, तुम दोनों ठीक कहते हो और जो इसके खिलाफ कहता है गलत कहता है। हम इस सहीफे से और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इससे अल्लाह के हुजूर बराहत का इजहार करते हैं। फिर हशाम बिन अमरू ने भी इसी तरह की बात कही। ये माजरा देखकर अबू जहल ने कहा, हो ना हो ये बात रात में तय की गई है और इसका मशवरा यहाँ के बजाय कहीं और किया गया है। इस दौरान अबू तालिब भी हरम पाक के गोशे में मौजूद थे। इनके आने की वजह यह थी कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सहीफे के बारे में ये खबर दी थी कि इस पर अल्लाह ताला ने कीड़े भेज दिए हैं जिन्होंने जुल्म-ओ-सितम और कराबत शिकनी की सारी बातें चट कर दी हैं اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے، ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: एक नई सोच,
3: नई सोच,
4: एक नई पहचान,
5: पहचान,
2: एक नई लगन,
5: नई लगन।
4: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
5: यूसीपी नंबर वन
4: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
4: यूसीपी की दुनिया।
5: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
4: सुनते रहिए,
6: सुनते रहिए,
4: सुनते रहिए।
6: 92.6 बोरियत को भगा दो।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.0।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6 यूसीपी की दुनिया।
5: व्हेन यू आर ऑफ Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: वेलकम बैक लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया प्रोग्राम जायबाज़ जिंदगी में आपका मेजबान मोहम्मद अली अजबद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी और सारी है और उसमें हम सर से मुख्तलिफ जो उनकी थॉट्स उनके नज़रियात हैं वो हम वसूल कर रहे हैं और उनको सुन भी रहे हैं। और देखें सर, एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। देखें हमारी जिंदगी में बहुत सारी हमारी प्रेफरेंसेज हैं, लाइक प्रायोरिटीज भी हैं, इसमें नौकरी भी मौजूद है, रिश्तेदार हैं, तालीम है, हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी अगर कोई शादीशुदा है तो, और भी कई दीगर चीज़ें हैं जिनको डेफिनेटली हमें साथ लेकर चलना होता है। तो फिर कैसे हम मेंटेन कर पाएंगे, एक बैलेंस भी तो क्रिएट करना है ना इनको। अब जिंदगी की तरजीहात में आप किस तरीके से, किस पैराए में इनको लेंगे और किस तरह इनमें एक तवाज़ुन जो है बरकरार रखा जाए।
1: बहुत आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया है कि हम जिस मजहब को मानने वाले हैं, दीन इस्लाम भी एक ही बात करता है कि जिंदगी तवाज़ुन में है। अगर आप इस वक्त पूरी कायनात को भी देखते हो ना, तो देखो एक पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे हैं, और कितने सारे सोलर सिस्टम हैं जो गैलेक्सीज में हैं, और कितनी सारी गैलेक्सीज हैं जो मिल्की वेज बना रही हैं, और कितनी सारी कहकशाएं हैं जिन्होंने मिलकर इस कायनात को बना रखा है, और उसके अंदर इंसान भी अपनी जिंदगी गुजार रहा है इतनी बड़ी कायनात के अंदर। अगर एक दिन के लिए सूरज ये कहे कि मैंने अपने टाइम से थोड़ा पहले निकलना है, तो क्या गुजरेगी हम पे। रात भी ये कहे कि अब मैंने कुछ 4 घंटे आना ही नहीं है, 4 घंटे के बाद मैं आऊंगी, तो क्या गुजरेगी। जमीन अपनी हरकत में ये कह दे कि मैंने 2 मिनट के लिए अपनी जो रोटेशन है इसको बंद करना है, कयामत बर्पा हो जाएगी। पूरी की पूरी कायनात के अंदर सूरज से लेके चांद सितारों तक, हवाओं के चलने से लेके मौसमों के बदलने तक, बर्फ के पिघलने से लेके पानी के और आबशारों के पानियों के घिरने तक, हर चीज के अंदर एक तवाजुन कायम है, और जब तक वो तवाजुन रहेगा कायनात जो है वो चलती रहेगी। जिंदगी जो है, इंसानी जिंदगी भी 5-7 टोकरियां उठाए फिरती है। एक टोकरी के अंदर रिश्ते पड़े हुए हैं, दूसरी टोकरी के अंदर वालिदैन की खिदमत पड़ी हुई है, तीसरी टोकरी के अंदर उसकी अपनी सेहत पड़ी हुई है, चौथी टोकरी के अंदर उसका अपना मजहब पड़ा हुआ है, किसी एक टोकरी के अंदर उसका सोशल सेटअप पड़ा हुआ है, एक टोकरी के अंदर उसकी नौकरी पड़ी हुई है। अब ये 5-7 टोकरियां हैं, अब आपने इन सारों को इकट्ठा लेके चलोगे तब आपकी एक भरपूर जिंदगी गुजरेगी। अगर मैं कहूं कि मुझसे एक ही टोकरी उठाई जाएगी, सेहत की टोकरी को मैं भूल जाऊं और 4 टोकरियां उठा के चलता जाऊं, तो क्या वो चीजें मैं उठा लूंगा। जब सेहत ही नहीं होगी तो वालिदैन की खिदमत कैसे होगी, सेहत ही नहीं होगी तो मजहब को वक्त मैं कैसे दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी आपके पास है, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपका प्रोफेशन है, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने नौकरी के ऊपर अपनी सेहत को भी कंप्रोमाइज किया हुआ है कि वो बीमार पड़े हुए हैं लेकिन लैपटॉप पे बैठ के वो कर रहे हैं। मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो दोस्त, ठीक है, उनको नहीं गर्ज कि मेरे कोई फैमिली भी पीछे है, आते हैं पैसे को अपनी वो बना लेते हैं कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि मैंने फलां 2 महीनों में गाड़ी लेनी है, लिहाजा धड़ाधड़ काम पकड़ी जा रहे हैं और काम करी जा रहे हैं। ना उनको अपनी सेहत की फिक्र है, ना ये फिक्र कि मेरे घर के अंदर मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं या मेरे वालिदैन हैं, और वो एक खास नुक्ते के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी को घुमा रहे हैं। ये ऐसे ही है कि एक टेबल के ऊपर 7 खाने पड़े हुए हैं और 7ों के 7ों जो हैं वो एक ही चीज़ हो, बिरयानी हो। आपने एक चीज खा ली तो दूसरी अब आपको खाने का दिल कर रहा है, लेकिन दूसरी को भी आप देख रहे हो तो वो वहां पे भी क्या है, बिरयानी, तीसरी में भी क्या है, बिरयानी। तो मतलब ये सारी चीजें ऐसे हैं कि मैं सुबह उठूं तो भी नौकरी, शाम को सोऊं तो भी नौकरी, जब भी मैं काम करूं तो मैं अपने काम को सोच रहा हूं। तो जिंदगी का जो बाकी डाइवर्सिटी है, जिंदगी को दीगर खूबसूरती है, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाती है। लिहाजा जितने भी इस वक्त लोग मुझको सुन रहे हैं, गाड़ियों में आ जा रहे हैं, अपनी जॉब से वापस आ रहे हैं या किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं, उन सारों के लिए मेरा ये पैगाम है कि उन्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इंसान का एक जिस्म होता है ना, इंसान के जिस्म में आंखें भी हैं, नाक भी है, कान भी है, जुबान भी है, बाजू भी है, हाथ भी है, जब तक तो इन सारों में एक खास तवाजुन रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगी, सारों में एक खास तर्ज की बाहमी रवाबत पे ये चलेंगे, तो आपकी जिंदगी खूबसूरत है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर हाँ जी, किसी एक चीज पे कान सुनना बंद कर दे तो पूरे जिस्म पे जो असरात मुरतब होंगे। आंख देखना बंद कर दे, चलो तो आप रहे हो लेकिन क्योंकि आंख देख नहीं रही है। इसीलिए जब किसी एक काम को आप पकड़ लोगे या किसी एक को छोड़ दोगे तो जिंदगी का जो रियल फेस है उसको आप कभी नहीं देख।
0: अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल से चाहूंगा कि आपको जरा मैं अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्लियर करूँ, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि देखे तोवाज़ुन जो है बैलेंस, बिल्कुल मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि बैलेंस बरकरार रखना चाहिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी लाइफ नॉर्मली तरीके से गुजार रहे हैं,
1: बिल्कुल ठीक है,
0: लेकिन जब एग्जाम्स आए तो उन्होंने बस पढ़ना ही शुरू कर दिया, खाना पीना भी उनका बहुत कम हो गया, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सब चीजें भूल गए, उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम भी देना खत्म कर दिया और एक कमरे में बस बंद हो गए और बस पढ़ाई है और वो है, तो बाकी चीजों को भूल गए। समटाइम्स मैंने बड़े करीबी अपने दोस्तों को भी देखा कि उन्होंने ऐसा किया, लोगों से दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया उस हफ्ते 10 दिन के लिए। तो देखें फिर तो बैलेंस यहाँ पे खत्म हो गया ना, मतलब आपने कहा कि तो फिर बैलेंस मेंटेन बंदा चाहते हुए भी नहीं कर पाता ना।
1: मैं आपको बताता हूँ, देखो आपकी जो स्टडी है वो पूरे 6 माह के सेमेस्टर पे बेस करती है, आपको कमरे में इसलिए बंद होना पड़ा कि इससे पहले आपने अपना बहुत सारा टाइम वक्त जाया किया होगा।
0: ये ठीक,
1: अगर आप वो वाला वक्त जाया ना करते तो आज आपको अपने आप को कमरे में बंद करने को जरूरत पेश ना आती। तो जिस टीचर ने जो जो लेक्चर आपको दिया आपने उसको सुना, और सुनने के बाद साथ साथ अपने नोट्स बनाते गए हो और उन चीजों को आप देखते गए, ऑब्जर्व करते गए हो जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो कभी भी वो बोझ आप पे एक ही दिन में नहीं पड़ेगा जो आपको एग्जाम्स के आखिरी दिनों में पड़ा। इसकी मिसाल में मैं आपको समझाता हूँ कि एक शख्स था और उसने एक भैंस पाली हुई थी, भैंस जो है उसने एक जो बच्चा दिया ना, तो उसने रोज उस भैंस के बच्चे को उठाना, पहले दिन भी उठाया, दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन उठाया, चौथे दिन उठाया, 50 दिनों का हो गया फिर भी उठाया, 1 साल का हो गया फिर भी उठा लिया, मतलब हर रोज जैसे जैसे उसका वजन बढ़ रहा था वैसे वैसे उस शख्स का उस भैंस को उठाने का जो स्टेमिना था वो भी साथ साथ ग्रो कर रहा था, और उसने 1 साल के बाद भी इतना बड़ा वजूद हो गया था उसका, लेकिन फिर भी उसने उठा लिया क्योंकि हर रोज उसका जिस्म जो था उस वजन के साथ मुताबिकत पैदा कर रहा था। अगर पहले 5 दिन तो वो उठा लेता और फिर वो कहता अच्छा मैं आखिरी साल में आखिरी महीने में इसको उठाऊंगा, तो क्या दोबारा उसकी टांग को भी वो नहीं पकड़ सकता था अगर वो 1 साल के बाद उसको हाथ लगाता तो? तो जब आप हर रोज का काम हर रोज कर लेते हैं, रोज का काम हर रोज करने का मतलब ये है कि इन द एंड किसी दिन आपको अपने आप को कमरे में बंद नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा तवाज़ुन का मतलब ही ये है कि आपने पहले भी तवाज़ुन नहीं रखा ना, लेक्चर सुन तो लिया, याद नहीं किया, तब टाइम आपने दोस्तों को ज्यादा दे दिया, तब भी आप इम्बैलेंस थे, आज आपने दोस्तों को भी छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ के कमरे में बंद कर लिया, आज भी आप इम्बैलेंस हैं। तो बैलेंस का मतलब ये है कि जिंदगी के अंदर हर रोज एक खास रूटीन के अंदर, 2 तरह के लोग वक्त जाया करते हैं जिनके लिए वक्त मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, एक वो होते हैं जिनके पास काम बहुत सारा हो और वक्त कम हो, उनको टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है, या जिनके पास टाइम बहुत सारा हो और काम कम हो उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है।
0: बिल्कुल, मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये तो बिल्कुल बैलेंस क्रिएट करना ये भी एक मुश्किल बात है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको जिंदगी में उन लोगों की जो लोग कामयाब हैं उनकी मिसालें जो है वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि उन्होंने जिंदगी में जो अचीवमेंट्स की हैं वो बैलेंस मेंटेन करके ही जिंदगी में जो है सब चीजों के साथ वो आगे बढ़े। तो हमें एक यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक और लेनी है, और आप सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया, थोड़ी देर में वापस आते हैं।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। प्रोग्राम जावेदा जिंदगी में आपका मेजबान मोहम्मद अली अशफत फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इरफान अली फानी साहब, हमें बता रहे हैं जिंदगी के तरजीहात के ऊपर गुफ्तगू जारी है और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ वो कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा शो पसंद भी आ रहा होगा। आप जो गाड़ी में इस वक्त चलते हुए लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं दोबारा उनको एक दफा मैं बता दूं कि हमारा टॉपिक जो है वो आज हमने जिंदगी की तरजीहात के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सर यहाँ पे आपने एक बात की थी बड़ी इम्पोर्टेंट, आपने दो बातें की थी। एक आपने कहा था कि वक्त ज्यादा काम कम, बाज लोग ऐसे हैं जिनके पास वक्त ज्यादा है काम कम है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काम ज्यादा है लेकिन वक्त कम है
2: और दोनों मिसमैनेज
1: कर देते हैं। शायद कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या कुछ लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो आपने बतानी बातें, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि क्या क्या माजरा है।
2: इसका मतलब ये है कि जाहिरी बात है टाइम को मैनेज करने का इशू उन्हीं लोगों को होगा जिनके पास करने को कुछ है। जिनके पास करने को कुछ नहीं है उनको तो टाइम मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। फिर एक यूनानी की मैं किताब पढ़ रहा था जिसमें वो ये कहता है कि जब इंसान मरने लगता है ना तो उसके सामने तीन चेहरे आ जाते हैं और तीनों चेहरे उसको चीख चीख के बोल रहे होते हैं कि हम वो हैं जिनको तूने जाया कर दिया था। वो जो आदमी होता है वो पूछता है उन तीनों चेहरों से तुम हो कौन, तो एक चेहरा बोलता है कि मैं वो वक्त हूं जो सारी जिंदगी तुम्हारे पास रहा लेकिन तुमने मुझको जाया कर दिया और आज इस बिस्तरे मर्ग पे तुम पड़े हुए हो। दूसरी तवानाई और ताकत, वो कहती है कि हर रोज तुम्हें यह ताकत मिली थी, मैं तुम्हारे पास तवानाई थी लेकिन तुमने मुझको भी फजूल कामों में जाया कर दिया, उन कामों पे नहीं लगाया जिन कामों पे लगाना था, लिहाजा आज तुम बिस्तरे मर्ग पे इस तरह से ज़ईफ होके पड़े हुए हो। और तीसरी चीज होती है आपके मामूलात, कि मैं तुम्हारे पास

0: कहते हैं कि मेरे लिए ये शोभा ठीक नहीं था, तो चलो बाद में उनको समझ आई कि वो मैस कॉम में अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, तो उनके लिए तो मेरा ये मैसेज होगा कि बच्चों कोई भी रास्ता है ना, हर रास्ते की अपनी मुश्किलात हैं। किसी भी रास्ते पे आप चल पड़ोगे, मैस कॉम में आओगे तो इसकी अपनी मुश्किलात होंगी, आप मोटरवे पे चलोगे तो उसकी अपनी मुश्किलात हैं, आप किसी टूटी हुई सड़क पे जा रहे होगे तो उसकी अपनी मुश्किलात है, मुश्किलात हर रास्ते में आएंगी। लिहाजा आपने अगर मुश्किलात की वजह से वो सफर को छोड़ना है ना, तो आप तो घर से निकल ही नहीं सकते हो।
1: सर मुश्किलात की वजह से नहीं, मैंने बोला यहाँ पे अपनी करेक्शन मैं खुद कर दूं अपनी, कि मैंने असल में ये बोला है कि अगर उसको पता ये चला है कि उसका टैलेंट इस फील्ड में नहीं था, इस फील्ड में, तो उसने अपने आप को इंटरचेंज कर लिया वहां से।
0: हां जी, उसी को मैं ये कह रहा हूं कि जब भी उसको ये समझ आ गई है कि ये फील्ड उसकी नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है कि वो जल्दी रियलाइजेशन उसको हो गई है कि ये रास्ता मेरा नहीं था, कि अब वो सही रास्ते पे आ गया है। वरना हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी अपने गलत रास्ते पे चलते हुए गुजार देते हैं, और उसी गलत रास्ते में उसको पैसे तो मिल रहे होते हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिल रही होती, क्योंकि खुशी तब मिलती है जब आपका पैशन और आपका प्रोफेशन इन दोनों की सरहदें मिल जाती हैं, तो तभी जिंदगी की हकीकी खुशी मिलती है।
1: पैशन और प्रोफेशन जब ये दोनों चीजें एक हो जाती हैं, तो फिर आपको बस अल्लाह ताला पे मेहरबान हो जाता है और आपको रास्ता बस नजर आता रहता है कामयाबी का, और आप चलते रहते हैं। वेरी वेल समड अप, बहुत मजा आया है आपके साथ गुफ्तगू करने का सर। और लिसनर्स, हमने कोशिश की कि हम जिंदगी की तरजीहात के बारे में गुफ्तगू, आज हमने सिलेक्शन जब इस टॉपिक की, बड़ा अहम टॉपिक था, तो हमने कोशिश पूरी की कि इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करें, और हमने गुफ्तगू की। और साथ साथ अब आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करना बिल्कुल जरूरी होता है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही ये है कि आप सब चीजों को बैलेंस करके चलें। आपकी जिंदगी में खुशी है, गमी है, और जो नए लोग आपसे मिलते हैं या पुराने लोग आपके साथ जिनके साथ ताल्लुकात हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिनके साथ भी आपकी एसोसिएशन है, और थिंग्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं, जो भी हैं, सबको कंबाइन लेकर चलें और बैलेंस करके चलें। कोशिश करें कि तवाज़ुन रखें, जो तवाज़ुन सर ने बताया ना, वो आपकी ज़िंदगी में अगर एक बैलेंस मौजूद होगा, डेफिनेटली आप भी सेटिस्फाई रहेंगे, आपके करीब जो हैं वो लोग जितने भी हैं मौजूद हैं वो भी सेटिस्फाई रहेंगे, और अल्लाह ताला भी सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला भी इस बात पर खुश होगा कि मेरा बंदा जो है वो सब चीज़ों को बैलेंस लेकर चल रहा है। तो हमने जो छोटी सी कोशिश की आप तक जो बातें लेकर आए, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश और हमारी जो बातें थी, सर की खूबसूरत बातें थी, आपको पसंद आई होंगी और आपके दिलों में उतरेंगी। और नेक्स्ट शो में हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स विद मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज, सेवरल सेट्स ऑफ रिसर्चर्स आर करेंटली वर्किंग टू मेक ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स बेटर एंड चीपर, व्हिच मींस दैट द नेक्स्ट ईयर कुड बी द ईयर कंज्यूमर्स फाइनली गेट होल्ड ऑफ देम। वंस ऑन द मार्केट, दे कुड इनविजिबली कलेक्ट सोलर पावर ऑन फोन एंड कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड इवन ऑन विंडोज।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उबने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज, दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।